0: ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਸ ਗੋ
1: ਚਲੋ ਹੈ ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋ ਹੀ ਜਾਤਾ
0: ਅਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ
1: ਯਾ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਂ ਲੈ ਆਏ
0: ਇਹ ਆਪ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰੋ
1: ਸੌਰੀ
0: ਚੌਕੀ ਸੰਭਾਲੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ
1: ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ मगर आपने तो कहा था कि तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है यहाँ तो कुछ गाड़ी वाले भी नहीं दिखाई देती मैं मरम्मत किसकी करूँगा
0: अरे गाड़ी की मरम्मत किसी और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता
1: और भला क्या काम हो सकता है
0: और बहुत से काम हो सकते हैं
1: जैसे
0: कर सकोगे
1: मैं हर काम कर सकता हूँ
0: सोच लो
1: सोच लिया
0: और अगर न कर सकी तो
1: हार मान जाऊंगा
0: ऐसे नहीं कोई शर्त होनी चाहिए
1: क्या
0: हाँ अगर तुम हार गए तो ये टोकरी उठाकर सारा दिन साथ घूमना पड़ेगा
1: टोकरी
0: मंजूर
1: मंजूर काम तो बताइए
0: जरा सोच तो लूं
1: हाँ।
0: वो देखते हो वो
1: हाँ
0: क्या
1: मुर्गी
0: हाँ पकड़ लाओ
1: मुर्गी
0: हाँ
1: ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है अभी पकड़ता हूँ ये लीजिए

0: लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने शीतल की बर्थडे पर यहां आकर इस पार्टी की रौनक बढ़ाई।
1: पार्टी में रौनक तो जरूर है, लेकिन कुछ फीकी सी है। कहो तो मैं
0: इस खुशी के मौके पर मैं आप सब लोगों को एक और खुशखबरी देना चाहता हूं। किसी ने कहा है, जीवन के हर मोड़ पर मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर।
2: वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूब। लेकिन अंकल, जीवन बिना मीत के और शायरी बिना संगीत के किस काम? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शेर में संगीत भर दूं।
0: जरूर जरूर, क्यों नहीं।
2: थैंक यू सर, थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके।